की फतेह। राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जीआं दी पावन पवित्र निगी मिठी गोद दे अंदर पाठ बोध समागम दे अंदर आप जी हाजरियां भरन वास्ते पहुंचे हो। सतगुरु जी ने अपार कृपा कीती है, पिछले कई दिनों तो सानू उड़ीक सी सिंह साहिब ज्ञानी हरमित्र सिंह जी मुख कथावाचक श्री मंजी साहिब सचखंड श्री हरिमंदर साहिब सो भी अज आप संगतां दे दर्शन करन आप जी दे विच शामिल होए हन। उन्हां दा गुरु घर दे समुचे ही प्रबंध वल्लों तहे दिल तो धन्नवाद है जी आया नूं। हुण समाप्ति तक उन्हां दे सानू रोज दर्शन हुंदे रहणगे। नाल ही मैं जी आया नूं आखदा हाँ बेसिक्स ऑफ सिखी तो भाई साहिब भाई जसवंत सिंह जी उन्होंने भी सानू दर्शन बख्शिश किए ने। अज नाल पाठ की भी गुरमुख प्यारे सेवा निभाउणगे, उन्हां दा भी हार्दिक धन्नवाद है जी आया नूं। समुची ही बेसिक्स ऑफ सिखी की टीम का बहुत बहुत धन्नवाद है। इस दे नाल ही आप जी नूं दस देवां, बहुत सारिया संगतां रोजाना ही पुछदियां ने कि भाई जरनैल सिंह जी नितनेम वालिया ने कदों आना है। महाराज जी ने कृपा की है इस 6 तरीक नूं उन्होंने पहुंच जाना है साढ़े कोल 6 अगस्त नूं। 7, 8 ते 9 आउण वाला जिहड़ा ये वीकेंड है ये 3 दिन वो साढ़े कोल रहणगे, फिर 10 तरीक की उन्होंने वापसी होगी। सो इस वीकेंड ते सानू भाई जरनैल सिंह जी नितनेम वाले जिन्हों का नितनेम सुनदिया सुनदिया बहुत समा आप जी ने महाराज जी खुशियां प्राप्त कीतियां ने। अज तक उन्हां दी मुबारक रसना तो आप जी पावन पवित्र गुरबाणी का पाठ सरवण करते आ रहे हो, उन्हां दे भी दर्शन इस वीकेंड ते होणगे। 7, 8 ते 9 तरीक नूं शुक्रवार शनिवार एतवार वो आप जी नूं इत्थे नाल बैठ के पाठ भी सरवण करवाउणगे, फिर उदों भी असीं आनंद माणांगे। इसे तरह आप जीआं ने निरंतर हाजरियां भरनियां ने। आओ हुण अगे आपां अज पाठ प्रारंभ करिए। आप जी अंग नंबर 943 दे उपर पोथियां प्रकाश कर लो। इत्थों हुण अगे अज संथिया प्रारंभ होनी है। कुछ विद्यार्थी लेट ने, फिर जोड़ी जिहड़ियां एक दो होर बेनतियां करनियां ने वह ब्रेक वेले विच कर देंगे। हुण आपां आओ पाठ प्रारंभ करिए जी। प्रेम अदब अते सत्कार दे नाल रसना दी पवित्रता अते मनती मन

सब कोई अनहत सुन कहाते होई, अनहत सुन रत्ते से कैसे, जिस ते उपजे तिस ही जैसे, ओए जन्म न मरह न आवह जाहे, नानक गोरमुख मन समझाहे, नौ सर सुबर दसवै पूरे, तह अनहत सुन बजावह तूरे, साचे राचे देख हजूरे, घट घट साच रहया पर पूरे, गुप्ति बाणी प्रगट होए, नानक परख लए सच सोए, सहज पाए मिलिए सुख होवे, गुरमुख जागे नींद न सोवे, सुन शब्द अपरंपर धारै, कहते मुकत शब्द निस्तारै, गुर की दीख्या जे सच राते, गुर की दीख्या से सच राते, नानक आप गवाए मिलन नहीं प्राते,

0: जोग न होई बिन सतगुर भेटे, मुक्त न होई बिन सतगुर भेटे, नाम पाया न ना जाए।
1: मुक्त न कोई पाठ है जी, दुबारे पढ़ दियो। बिन सतगुर भेटे मुक्त न कोई,
0: बिन सतगुर भेटे मुक्त न कोई, बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाए। बिन सतगुर भेटे महा दुख पाए, बिन सतगुर भेटे

0: मुक्त न होई। तेरी गत मित तू है जान हे, क्या को आख वखाण है। तू आपे गुप्ता आपे प्रगट, आपे सब रंग माण है। साधिक सिद्ध गुरु बहु चेले, खोजत फिर हे फुरमाण है। फिर हे फुरमाण है, साधिक सिद्ध गुरु बहु चेले, खोजत फिर हे फुरमाण है। मग हे नाम पाए एह पिखिया, तेरे दर्शन को कुरबान है। अविनाशी प्रभ खेल रचाया, गुरमुख सोजी होई। नानक सब जुग आपे वरता, दूजा अवर ना कोई।
1: जेड़े पाठ जिस तरह जो तुसी सोदर विच पढ़दे हो, उत्थे गगे कन्ना वावा ते हाही नू सिहारी, गावह पाठ असी करदे हां। हैड़े नू कन्ना वावा हाही नू सिहारी, आवह पाठ करदे हां। सो कुछ विद्वाना दी ए राय है, जिस तरह गुरमुख प्यारियां ने पाठ कीता है, ठीक है कि अज कल विद्वान इस तरीके नाल संथिया करवाउंदे ने, तां करके फिर हुण जिहड़े नवे विद्यार्थी ने उह इस तरीके दे नाल पाठ करदे आ। पर चलो खैर, विचार इहदे विच इह है कि इक्को ही सिहारी है हाहे वाले अखर नूं। जे गाव इह जां आव इह पाठ इस तरीके, फिर इह इस तरीके पाठ करिए, फिर जिहड़ा इक अखर अगला हुंदा है विचाले वाला, मिडल वाला अखर, ओनू भी फिर कई बारी सिहारी जां लां लग जांदी है। सो इस करके आपां पाठ तुहानूं शुरू तों इही कराए ने ते इही आप जी ने रखणे ने। गाव है, आव है, फिर है, भव है, इसे तरह ही सारे पाठ करने ने जदों ये होणगे।

जानी उन अंदर उन अंतर लोभ विकार ओए थाओ कुथाओ ना जाननी ओन अंतर लोभ विकार ओए आपने स्वाय आए बह गल्ला करह।

रूप है सेख मसाय कपीर अंत काल मत लागे भीड़ रूप है राजे कन पड़ाए घर घर मंग है भिख्या जाए।

दुखिया सब संसार मन्ने नाओ सोई जिन जाए औरे कर्म न लेखै लाए महला दूजा जाप तप सब किछ मन्ने है अवर कारा सब बाद नानक मन्या मन्नी है बुझिया गुर प्रसाद पौड़ी काया हंस तुर मेल काया हंस तुर मेल करतै लिख पाया सब मह गोपत वर्तदा गुरमुख प्रगटाया गुण गावै गुण उचरै गुण माहे समाया सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया

होए कै रतना परखन जाए रतना सार ना जानई आवै आप लखाए महला दूजा रतना केरी गुथली रतनी खोली आए वखर तै बनजारिया दुहा रही समाए जिन गुण पल्ले नानका मानक मानक बनजह से रतना सार ना जानई अंधे वत है लोए पौड़ी नौ दरवाजे काया कोट है दसवै गुप्त रखीजै बजर कपाट न खुलनी गुर शब्द खुलीजै अनहद वाजे धुन वजदे गुर शब्द सुनीजै तित घट अंतर चानना कर भगत मिलीजै सब मह एक वरतदा जिन आपे रचन रचाई वाह वाह सच्चे पात साह तू सच्ची नाई श्लोक महला दूजा अंधे कै राहे दसे है अंधा होए सो जाए होए सुजाखा नानका सो क्या उजड़ पाए अंधे एह न आखियन जिन मुख लोयन।

0: अगम अथाह बेअंत पर परटया अगम अथाह बेअंत पर परटया
1: परगटया
0: परगटया
1: परगटया
0: परटया
1: गग्गा बोलना ना
2: गग्गा इदे विच है नहीं भाई जी थे इधर कहीं पोत
1: सच्चा साहिब आप गुरमुख परगटया
2: परगटया हां जी
1: गग्गा लगना चाहिए
2: थला प्रगटिया
0: होएगा अगम अथा बेअंत पर परटिया आपे वड पा तिसाह आपे वजरीटिया
1: वजीरटिया
0: वजीरटिया कोई ना जाने कीम केवड़ मट्टिया
2: इत जड़ा पाठ आपे दी थान ते आप सी आपे वड़ पात साहु आप वजीरटिया इतना पाठ कर हाँ जी

0: जंत्र
1: दयाल ईड़ी मसीहा दी बुला के
0: दयाल होए सब जीव जंत्र हर नानक नजर निहाल महला पंजवा विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देहे नाम संतोखिया उतरा मन की भुख गुरवाण तृण गुरवाण तिण।

कटिया सदा सदा सुख होहा पौड़ी। जो तुद भाणा जंत सो तुद बुझई, जो तुद भाणा जंत सो दरगह सिजई। जिसनो तेरी नदर होमै तिस गई, जिसनो तू संतुष्ट कलमल तिस खई।

उपदेश सुन हो तुम गुर सिख हो सच्चा एह सुआओ जन्म पदार्थ सफल होए मन मह लाहे हो पाओ सुख जन्म पदार्थ सफल होए मन मह लाहे हो पाओ सुख।

0: ले सकत सहारं पैसी ले गगन मझारं बेदिया ले चक्र पयंगा पेटिया ले राय निसंगा
1: जिहड़ा उपर पाठ आया सी ना तब अंतर मजन कीना ये पारा करना है पाठ
0: तब अंतर मजन कीना
2: मजन
0: मजन कीना
2: अदक ला के जमे बोली
0: तब अंतर मजन कीना पावन पत उन मन रहन खरा नाही मृत न जन्म जरा रहाओ उल्टी ले सकत सहारं पैसी ले गगन मजारं बेदिया ले चक्कर पयंगा भेटिया ले राय निसंगा चूकिया ले मोह मैं आसा सस कीनो सूर गिरासा जब कुंभक पर पुर लीना तह बाजे अनहद बीणा बकता बक शब्द सुने सुनाया।

0: आनी ले कागद काटी ले गुडी।
1: ये आनी ले संबंध के जर ले कहना ना,
0: आनी ले कागद काटी ले गुडी आकाश मदे परमियले।
1: मदे भी कस के
0: आनी ले कागद काटी ले गुडी आकाश मदे परमियले।
1: पाठ आनी ले कागद काटी ले गुडी आकाश मध्य परमियले।
0: आनी ले
1: कागद यो पाठ करना,
0: आनी ले कागद काटी ले गुडी आकाश मध्य परमियले।
2: गुडी दी थां ते भी गुडी ठीक है,
1: गुडी हां जी गुडी कहंदे पतंग नु।
2: फिर पढ़ दे।
0: आनी ले कागद काटी ले गुडी आकाश मध्य परमियले।

0: रहाओ। चंद न होता सूर न होता, पानी पावन मिलाया, पानी पावन मिलाया। चंद न होता सूर न होता, पानी पावन मिलाया।
1: सूर नहीं कहना, सूर, सूरज दा वाचक, सूर।

की जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में राज करेगा खालसा आकी रहना ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे जो शरदा

प्रभु दरबारा आसा देसा बंद पराना महल न पावे फिर तो बिगाना सकल ब्याद के बस कर दीना फिर तो प्यास ज्यों जल बिना मीना कछु सियाण प उकत न मोरी एक आस ठाकुर प्रभु तोरी करो बेनती सतगुर पासे मेल ले हो नानक अरदासे पयो कृपाल साध संग पाया नानक तृप्ते पूरा पाया पयो कृपाल साध संग पाया

तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

आए जाहे। एहो अंत ना जाने कोए, बहुता कहिया बहुता होए। वड्डा साहिब ऊचा थाओ, ऊचे उपर ऊचा नाओ। एवड ऊचा होवै कोए, तिस ऊचे कौ जाने सोए। जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता करम लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। किते मंगहै जोध अपार, किते आ गणत नहीं विचार। किते खप तुटह वेकार, किते लै लै मुकर पाहे। किते मूर्ख खाही खाहे, किते आ दुख भूख साद मार। एह पे दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणै होए। होर आख ना सकै कोए, जे को खाएक आखन पाए। ओह जाने जितिया मुहे खाए, आपे जाने आपे दे। आख है से पे के ई के, जिसनो बक्से सिफत सालाह। नानक पात साही पात साह, अमुल गुण अमुल वापार। अमुल वापारिये अमुल भंडार, अमुल आवह अमुल लै जाहे। अमुल पाए अमुला समाहे, अमुल धर्म अमुल दीवान। अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बख्शीस अमुल निशान। अमुल कर्म अमुल फुरमान, अमुल अमुल आख्या ना जाए। आख आख रहे लिव लाए, आख है वेद पाठ पुराण। आख है पढ़े करह वखियान, आख है ब्रह्म आख है इंद। आख है गोपी तै गोविंद, आख है ईसर आख है सिद्ध। आख है केते कीते बुद्ध, आख है दानव आख है देव। आख है सोर नार मुन जान सेव, केते आख है आखन पाहे। केते कह कह उठ उठ जाहे, एते कीते होर करेहे। ता आख ना सकह केई के, जेवड पावै तेवड होए। नानक जाने साचा सोए, जे को आखै बोल विगाड़। ता लिखिया सिर गावारा गावार, सो दार के हा सो घर के हा। जित बह सर्ब समाले, वाजे नाद अनेक असंखा। केते वावन हारे, केते राग परी स्यो कहियन। केते गावन हारे, गावह तुहनो पावन पानी बै संतर। गावै राजा धर्म द्वारे, गावै चित गुप्त। लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे। गावै ईसर ब्रह्मा देवी, सोहन सदा सवारे। गावै इंद इदासन बैठे देवते आदार नाले। गावै सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी, गावह वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले। गावह मोहनिया मन मोहन, सुरगा मछ पयाले। गावन रतन उपाए तेरे, अठ सठ तीर्थ नाले। गावह जोध महाबल सूरा, गावह खानी चारे। गावह खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे तारे। से तुदनो गावह जो तुद पावन, रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चेतना आवन। नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब। साचा साची नाई है, पी होसी जाए ना जासी। रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी। माया जिन उपाई, कर कर विखै कीता अपना। जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी। हुक्म

नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तदेवाय नमस्तं अपेवाय नमस्तं अजन्मे नमस्तं सोभनमे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पावने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस्तदयाले नमस्तं अबरने नमस्तं अमरने नमस्तं जरारं नमस्तं कीर्तारं नमो सर्वतन्दे नमोस्त अबंदे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसुखं नमो सर्वपूखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वय प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अदेख हैं अपेख हैं अनाम हैं अकाम हैं अतेय हैं अपेय हैं अजीत हैं अपीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अबरण हैं अपूत हैं अपर्ण हैं अगंज हैं अपंज हैं अचूज हैं अचंज हैं अमीक हैं रफीक हैं अतंध हैं अबंध हैं निर्बूज हैं असूज हैं अकाल हैं अजाल हैं अल्लाह हैं अजाह हैं अनंत हैं महंत हैं अलीक हैं निरसरीक हैं निरलंब हैं असंब हैं अगम हैं अजम हैं अपूत हैं अछूत हैं अलोक हैं अशोक हैं अकर्म हैं अपर्म हैं अजीत हैं अपीत हैं अबाह हैं अगाह हैं अमान हैं निदान हैं अनेक हैं फिर एक हैं पुजंग पर्यात छंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौने अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ती बेपूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे स्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजे स्वरंग परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगे स्वरंग परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंतरं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं पुरुष पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी शांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे
नमो सुख सुखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्यं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल छंद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर ततर विराज ही अवधूत रूप रे साल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग नारेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख नाराग जतर ततर दिशा विसा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हूं नह जाहे सर्व मान सर्वतर मान सदैव मान तताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव ना जान ही जेह बेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जानई केह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बिहीन चक्कर बकर फिरै चतर चक मान ही पुर तीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जेह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्व बिसव रचयो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अपूत अलख अपेस अंग राग ना रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र ना जान ही जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाखत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आव ही वह चित मद पार छंद त्वय प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस दिन अनास आजान बाहु साहान साहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग अब अपंग गतमित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निरपय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा पार नाडय अन दंड बाडय चाचरी छंद त्वय प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग पर्यात छंद
चत्तर चक्कर करता, चत्तर चक्कर हरता, चत्तर चक्कर दाने, चत्तर चक्कर जाने, चत्तर चक्कर वर्ते, चत्तर चक्कर परते, चत्तर चक्कर पाले, चत्तर चक्कर काले, चत्तर चक्कर पासे, चत्तर चक्कर वासे, चत्तर चक्कर माने आए, चत्तर चक्कर दाने आए, चाचरी छांद, ना सत्तराय ना मित्तराय ना परमंग ना पितराय ना कर्मंग ना काय अजन्मंग अजाय ना चित्तराय ना मित्तराय परे है पवित्राय पृथिसाय अदिसाय अदृश्य अकृष्य भगवती छांद त्वय प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज पेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत बरनै के विभूत करनै के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के आ सूक बरनै के सर्वा अपरनै के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आदि अदेव है के आप अपेव है के चित्तरंग बेहिनै के एकै अधीनै के रोजी रजाकै रहीमै रिहाकै के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के अफवुल गुनाह है के साहान साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वतर माने आए के सर्वतर दाने आए के सर्वतर गाउनै के सर्वतर पावनै के सर्वतर देसै के सर्वतर पेसै के सर्वतर राजै के सर्वतर साजै के सर्वतर दीनै के सर्वतर लीनै के सर्वतर जाहु के सर्वतर पाहु के सर्वतर देसाय के सर्वतर पेसाय के सर्वतर कालाय के सर्वतर पालाय के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काजाय के सर्वतर राजाय के सर्वतर सोखाय के सर्वतर पोखाय के सर्वतर तराणय के सर्वतर प्राणय के सर्वतर देसै के सर्वतर पेसै के सर्वतर मान्याय सदैवं प्रधान्याय के सर्वतर जाप्याय के सर्वतर थाप्याय के सर्वतर भानय के सर्वतर मानय के सर्वतर इंद्रय के सर्वतर चंद्रय के सर्वं कलिमय के परमं फहिमय के आकल अलामय के साहिब कलामय के हुसनुल वजू है तमामुल रजू है हमेशुल सलामै सलीखत मुदामै गनीमुल सिकस्तै गरीबुल परस्तै बिलंदुल मकानै जमीनुल जमानै तमीजुल तमामै रजूअल निदानै हरीफुल अजीमै रजायक यकीनै अनेकुल तरंग हैं अपेद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुकत स्वरूप हैं त्रिमुकत विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं अपेदी अनूप हैं समस्तो पराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओअंग आदरूपे अनाद स्वरूपै अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागै त्रिपुगत स्वरूप हैं अछिज हैं अछूत हैं के नरकं परनास हैं पृथ्वीउल प्रवास हैं निरुकत प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विपुगत स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं निरुकत सदा हैं विपुगत प्रभा हैं अनुकत स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अदूत है अनास है उदास है
अतंध हैं, अबंध हैं, अभगत हैं, विरक्त हैं, अनास हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलेख हैं, अदेख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगंभ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट छंद त्वय प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं जुगता, सर्वं मुक्ता, रसावल छंद त्वय प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रय न पुत्रय न सत्रय न मित्रय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय निरसाकं सरीक हैं, अमितो अमीक हैं, सदैवं प्रभा हैं, अजय हैं, अजा हैं, भगवती छंद त्वय प्रसाद के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमेशुल सलाम हैं, समस्तुल कलाम हैं, के साहिब दिमाग हैं, के हुसनल चिराग हैं, के कामल करीम हैं, के राज करहीम हैं, के रोजी देहांद हैं, के राज कर हिंद हैं, करीमुल कमाल हैं, के हुसनुल जमाल हैं, गनीमुल खिराज हैं, गरीबुल निवाज हैं, हरीफुल सिकान हैं, हिरासुल फिकान हैं, कलंकं परनास हैं, समस्तुल निवास हैं, अगंजुल गनीम हैं, रिजाय कर हीम हैं, समस्तुल जुबा हैं, के साहिब किरा हैं, के नरकं परनास हैं, बेहस्तुल निवास हैं, के सर्बुल गवान हैं, हमेशुल रवान हैं, तमामुल तमीज हैं, समस्तुल अजीज हैं, परं परम ईस हैं, समस्तुल अदीस हैं, अदेशुल अलेख हैं, हमेशुल अपेख हैं, जमीनुल जमा हैं, अमीकुल इमा हैं, करीमुल कमाल हैं, करीमुल कमाल हैं, के जुरत जमाल हैं, के अचलं प्रकाश हैं, के अमितो सुबास हैं, के अजब स्वरूप हैं, के अमितो विभूत हैं, के अमितो पसा हैं, के आत्म प्रभा हैं, के अचलं अनंग हैं, के अमितो अपंग हैं, मद भार छंद त्वय प्रसाद, मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम, अर बर अगंज हर नर प्रपंज, अन गण प्रणाम मुन मन सलाम, हर नर अखंड बर नर अमंड, अनुभव अनास मुन मन प्रकाश, गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम, अन चिज अंग आसन अभंग, उपमा अपार गत मित उदार, जाल थल अमंड दिस विस अपंड, जाल थल महंत दिस विस बेअंत, अनुभव अनास त्रित धर तुरास, आ जान बाहु एकै सदाहु, ओंकार आदि कथनी अनाद, खल खंड ख्याल गुरबर अकाल, घर घर प्रणाम चित चरण नाम, अन छिज गात आजिज न बात, अन झंझ गात अन रंज बात, अन टुट भंडार अन थट अपार, आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म, अन बरन अनंत दाता महंत, हर बोल मना छंद त्वय प्रसाद, करुणालय है अर कालय है, खल खंडन है मह मंडन है, जगतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, कल कारण हैं, सर्व उबारण हैं, त्रित के धरण हैं, जग के करण हैं, मन मान्या हैं, जग जान्या हैं, सर्वं पर हैं, सर्वं कर हैं, सर्व पास्या हैं, सर्व नास्या हैं, करुणाकर हैं, विश्वं पर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं,
ब्रह्मंडस हैं, कालखंडस हैं, पारते पार हैं, करुणाकार हैं, अजपा जाप हैं, अथपा थाप हैं, अकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अमृता मृत हैं, करुणा कृत हैं, अकृता कृत हैं, तरणी तृत हैं, अमितेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अजबा कृत हैं, अमृता मृत हैं, नर नायक हैं, खल कायक हैं, बेस्वंग पर हैं, करुणालय हैं, नृप नायक हैं, सर्व पायक हैं, भव भंजन हैं, अर गंजन हैं, रिप तापन हैं, जाप जापन हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ता कार हैं, हर्ता हर हैं, परमात्म हैं, सर्व आत्म हैं, आत्म बास हैं, जास के जास हैं, पुजंग पर्यात छंद, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सांत रूपे, नमो परम तत्तं अतत्तं स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो सांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादं बेपूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, एक अक्षरी छंद, अजय अलय अपय अभय, अपू अजू अनास आकाश, अगंज अपंज, अलख अपख, अकाल दयाल, अलेख अपेख, अनाम अकाम, अगाह अटाह, अनाथे परमाथे, अजोनी अमोनी, नारागे नारंगे, नारूपे नारेखे, अकर्मंग अपरमंग, अगंजे अलेखे, पुजंग पर्यात छंद, नमस्तुल परनामे, समस्तुल परनासे, अगंजुल अनामे, समस्तुल निवासे, निरकामंग बेपूते, समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मं परनासी, सुतर्मं बेपूते, सदा सचदानंद, सतरं परनासी, क्रीमुल कुनिंदा, समस्तुल निवासी, अजायब बेपूते, गजायब गनीमे, हरियं करियं क्रीमुल रहीमे, चत्तर चक्रवर्ती, चत्तर चक्र पुगते, स्वयं पाव सुबं, सर्वदा सर्वजुगते, दुकालं परनासी, दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे, अपंगं बेपूते, दुकालं परनासी, दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे, अपंगं बेपूते, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पातशाही दसवीं त्वै प्रसाद सुवैये, सरावग सुध समूह सिधान के, देख फिरियो घर जोग जति के, सूर सुरार्दन सुध सुधादिक, संत समूह अनेक मती के, सारे ही देश को देख रहे मत, को न देखियत प्राण पति के, श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते, एक रति बिन एक रति के, माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग, सवारे कोट तुरंग, कुरंग से कूदत, पौन के गौन कौ जात निवारे, भारी पुजान के भूप भली बिद, नियावत शीस न जात जात बिचारे, एते पय तो कहा पय भूपत, अंत काओ नांगे ही पाए पधारे, जीत फिरै सब देश दिसान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे,
गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख पवान के भूपत कौन गणै नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसेखै वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखै पौन आहार जति जत धार सबै सो विचार हजारक देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह दुरजान दलेंगे भारी गुमान भरे मन मै कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तुर अरीन मरूर मवासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अबिचार है सार की धार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन मातिग जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब सिरे सब को सिर नायक जाचक अनेक सुवेक देवैया दानव देव फनेंद निसाचर भूत भविख पवान जपेंगे जीव जिते जल मै थल मै पल ही पल मै सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंदर नरादप जौन तेरे लोक को राज करेंगे कोट इसनान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सची पात अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस हैं पग ते नर फेर ना देह धरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरयो लिए सात समुंदरन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहाओ सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को शीस निवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह पात साही दसवी कब्यो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कार दै करिया सब बैरन कौ आज संगरिया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊ जो बार चाहऊ सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्तर हमारे मारिया है
आप हाथ दै मुझै उबरियै मरण काल का त्रास निवरियै हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझजु करिया हो रक्षा राख लेहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरे चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदि अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को साव गुण सुख दियो सतरन को पालमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना है घट घट के पट पट के जाना है जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निरिबकार निरलंभ आदि अनिल अनाद असंभ

बस एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नु सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है। जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरियाए घर नौ निध आवै ताए। सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सब थाई हुई सहाय दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाह। पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनदिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघनियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासा नाल निबाही तिन्हां समूह शहीदां सिंघां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा।

सो कहो टल गुर सेविया अहनेस सहज सुबाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहो कुरसहो चटिया तुद डिठे सच्चे पात साह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात साह सिर साहां दै साहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो सतनाम वाहे गुरु साहिब जी बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावै

सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तो दके लग करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्याहिन सच जो मर जमै सो कचन।

कूड राजा कूड प्रजा कूड सब संसार कूड मंडप कूड माड़ी कूड बैसनहार कूड सोयना कूड रूपा कूड पहनहार कूड काया कूड कपड़ कूड रूपा पा।

चिर पयो दर्शन देखे कह रविदास आस लग जीवो। चिर पयो दर्शन देखे हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत शाड बिख बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले

तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरियै कर नौ निध आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप। जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ। दर्शन दीदार उपदेश जी का त्यांतर के बोलो जी।

जाको बहु परवार कह नानक थिर कछ नहीं सुपने जो संसार सो कह टल गुर सेविए।

जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वड्डियां भागां वाले हो महाराज जी दे पावन पवित्र चरणा विच सज के गुरबाणी पढ़ सुन के लाहे प्राप्त कर रहे हो। धनवादी हाँ संघ साहिब ज्ञानी हरमित्र सिंह जी, मुख कथावाचक श्री मंजी साहिब सचखंड श्री हरिमंदर साहिब, आप जी ने लड़ीवार पावन गुरबाणी दी विचार नाल शिरशार कर रहे सन। तो इस वेले जो परसों सवेर गुरु घर दे रागी भाई सतनाम सिंह जी श्री आनंदपुर साहिब वाले अकाल चलाना कर गए हन, उन्हां दे निमित श्री सहज पाठ साहिब जी प्रारंभ होए हन। आप संगतां दे चरणां विच बेनती है कि कल तो लैके ये सारा हफ्ता उन्हां दा शरीर इंडिया भेजण वास्ते उन्हां दे परिवार कोल अते उन्हां दे परिवार दी सहायता करन वास्ते बाहर काउंटर लाया जांदा है। सो आप संगतां दे चरणां विच बेनती है कि आप जी ने जरूर अपने दसवंध विचों कुछ माया उन्हां दे परिवार दे सहयोग वास्ते अर्पित करनी। आप जी ने बार जोड़ा कर दे अगले पासे उत्थे अपना दसवंध जमा करवा के रसीद प्राप्त करनी। सो उन्हां दा शरीर तां कि इंडिया पहुंच सके ते उन्हां दे परिवार दी बच्चियां दी मदद हो सके। सो आओ अगले समय वास्ते मैं बेनती करा भाई दविंदर सिंह जी फतेहगढ़ साहिब वाले आप संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन सरवण करवाउणगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कर सत विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करहो गुरु सत कव नल कह जिन गुरु न देखियो न कियो ते अक्यथ संसार मह ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना सार न जाना तेरी

वाहेगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल चवर छतर तख्त जी दे मालक, दसाही पातशाहियों की आत्मक जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, सचे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुंदर सजे हुए दीवाना अंदर हाजरियां लगवा रही है। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, वडभागे हाँ अकाल पुरख वाहिगुरु जी की मेहर सदका आपां नूं संगत विच आउण दा, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे दर्शन दीदार करन दा सुभाग प्राप्त हो रहा है। दास तो पहलां बहुत ही सन्मानयोग कीर्तनीए भाई गुरजीत सिंह जी, तिन्हां दे कीर्तनी जत्थे पासों आप संगतां ने अमृतमई पावन गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है। कलयुग मह कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपी है लाए ध्याना, और नाल ही साडे जीवां दे उधार दे वास्ते सतगुरु जी ने बख्शिश की है। कथा कीर्तन सुखदाई, आत्मक सुख लैण दे लई परमात्मा की कीर्ति ते अकाल पुरख वाहिगुरु जी की कथा जो सानू सतगुरु मित्र ने सुनाईया हन, जिस दे नाल जीवन की सफलता होंदी है। सो वो पावन विचारां सरवण करन दे लई आपां जुड़ बैठे हाँ। आओ गुरु संगत जी, हुण समा होया जो श्रीमान भाई गुरदास साहिब जी तिन्हां दी उचारण कीती हुई पावन बाणी कबित सवैये उन्हां दी आपां विचार सरवण करदे आ रहे हाँ। जिस वक्त प्रतख हरी का स्वरूप धन गुरु अर्जन देव साहब जी ने रामसर साहब वाली धरती ते साडे जीवन की कल्याण दे लई श्री ग्रंथ साहब जी की बीड भाई गुरदास साहब जी पासों लिखवाई है, सारे गुरु साहबाना की बाणी कत्तर करके भगत साहबाना की बाणी एकत्र की, भट्ट साहबाना की बाणी, गुरसिखा की बाणी गुरु ग्रंथ साहब अंदर दर्ज की है। उस वेले श्रीमान भाई गुरदास साहब जी ने भी गुरु साहब जी ने यह बचन कहे सी कि तुसीं भी अपनी बाणी लियाओ, असीं गुरु ग्रंथ साहब अंदर दर्ज करवाइए। उस वेले ना भाई गुरदास जी ने बहुत ही निम्रता दे विच आके हथ बन के बेनती की सतगुरु सेवक

हर आपे बोल बुलावे, हर आपे पंच तत् बिस्थारा, विच धातु पंच आप पावे। जन नानक सतगुर मेले आपे,

बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो पाप तजाया बलराम जियो धर्म दृढ़ो हर नाम तियावो सिमरत नाम दृढ़ाया सतगुर गुर पूरा आराधो सब किल विख पाप गवाया सहज आनंद होवा वडभागी मन हर हर मीठा लाया जन कह नानक लाव पहली।

साहब, तुम मात पिता हम बारिक, तुमरी कृपा मैं सुख, कोई ना जानी तुमरा उचे ते ऊचा, सगल समग्री तुमरा सूतर, तुमते हो ए सो, तुमरी गत मित तुम ही, नानक दास सदा। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आई। फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदासी हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू समराओ श्री हर राय। श्री हर किशन ते आईया जिस डिठा सब दुख जाई, तेग बहादुर सिमरियां घर नौन दे आवै ताई, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके, बोलो जी वाहेगुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां, चालियां मुक्तियां हठियां, जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया, देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता, तन्हा प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके, खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सिह दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चिराए गए, गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुबासां संग निभाही, तनहां दी कमाई दा ध्यान तरके, खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके, बोलो जी वाहेगुरु। प्रथमी सरबत खालसा जी की अरदास है। सरबत खालसा जी कौ वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चित आवै चेतावन का सदका सर्ब सुख होवै, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत, देग तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, बबेक दान, विसाहा दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर साहब जी दे दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुग हो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत, पत दा राखा आप वाहिगुरु, हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो, श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वरे गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, तन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो, हे निमाणियां दे मान नीताणियां दे तान, नियोटियां दी ओट, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी दे पावन पवित्र चरणा विच अरदास है जी, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, आप जी दी हजूरी अंदर शुभ आनंद का लड़का भाई हरजोत सिंह, पिता सरदार परमिंदर सिंह ते माता सुखदीप कौर, दादा सरदार गुरदयाल सिंह ते दादी बीबी प्रीतम कौर जी, लड़की बीबा जस नूर कौर, सपुत्री सरदार गुरप्रीत सिंह ते माता बलवीर कौर, दाता जी तिन्हां दा शुभ आनंद कारज आप जी दी हजूरी अंदर गुरमर्यादा अनुसार संपूर्ण होए, लावां दा पाठ करदिआं कीर्तन करदिआं सेवा करदिआं आप जी दे दासरियां पासों बेअंत भुल्लां बख्श देना जी, कृपा करनी सुभाग परी जोड़ी दे सिर ते मेर भरिया हथ रखना,
ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਾਈ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਢੱਕਣੇ ਜੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਗ ਭਰੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ।

गुण गावत अतुल सुख पाया, ठाकुर अगम अपारे। जो जान पार ब्रह्म अपने कीने,

0: ने की फरियाद जा छाती नाले तुसा ने लगा लिया
1: तो वाला बेड़ा जांदा डुबदा पिता वार तुसा ने बचा लिया
0: दुखिया ने की फरियाद जा छाती नाले तुसा नु लगा लिया
1: तो वाला बेड़ा जांदा डुबदा पिता वार तुसा ने बचा लिया
0: करनी तो जावा भलहार मैं करनी तो जावा भलहार मैं किते कम तुसा जो महान है धन गुरु धन भजवालिया।

रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहण न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाई आ, सिद्धा पुरखा किया वड्याई आ। तुद विण सिद्धि किनै न पाईआ, कर्म मिलै नाही ठाक रहाइया। आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू दे

जिसनो तू जानाए है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाण जिन हर सेवया तिन सुख पाया।

प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। खुजो सदा हमारे पच्छा, श्रीयस तो जजू करियो रक्षा।

सारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज से तज कीनी ओत भुज खान बौहर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो संकर इकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए।

दुष्ट जिते उठवा तूत पाता, सकल मलेच करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे। पुरख जबन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नि हरि हो, ताके ताप तनक मह हरि हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छा छुए सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा।

चुलंब जे सतगुर पाया चले जन्म सवार वखर सच ले पत पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ मन तन सच सलाहे साचे मन पाया।

गुणसार अंतर तू वस, तू वस मन माहे सहजे रस रस, मूर्ख मन समझाए आखो केतड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगेतड़ा, नित नित हृदय समाल प्रीतम अपना, जे चल है गुण नाल नाही दुख संतापना, मनमुख भरम भुलाना ना।

दास जे तुद पावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।